हर हर रुसमासी सैदान सैदान चिन्ह ध्याय जी चन्नानक थिम्बो चासी थेरी भगत बंदर जी परे ध्यान प्यांत थेरी भगत सलाह तुझी हरि अनेक नेक नंता थेरी अनेक करे हम पूजा जी तू थापे जपे ध्यांत तेरी अनेक परे बल सिमरत शासक जी कर क्रिया खट खराम खरांत से भगत ले जन नानक जी जो पावे मेरे और भगवंत तू आद पुरख परम प्रकट जी तू जय वर्ण अवरण खोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचो कर्त सोई तू रापे बावे सोए वर्ते जी तू आपे करे सोए तू रापे स्वेर सब पाए जी तू आपे सिर सब गोए चन्नान गुंगावे करते के जी जो सब सखा जन्नोए आसा मेला चोता तू कर्त सच्चा मैडर साई जो तू बावे सोई तिसी जो तू दे सो पाराम सब तेरी तू सब निधी आया जिस नो कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमुख लाडा मन मुख लुभाया तू राप छोड़िया आप मिलाया तू दरिया सतुची माए तुझ बिंदु च कोई नाही जी जन सब तेरा खेल विचोग मिल विचोलिया संजोगी मेल जिस नो तू जनाए है सोई जन जाने हर गुन साधी आग पर खाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया से जी हर नाम समाया तू आपे करत तेरा क्या सब होई तू बिंदु जा अवरन खोई तू कर कर बेके जाने सोए चन्नान गुरमुख प्रगट होए आसा मेला पेला तित सफरे बेली निवास पानी पावे तिने किया पंकज मो पग नहीं चाले हम देखा तैद बियाले मने